उस हरी ने बाकी इंसानों भी पैदा किया। तुहाडे विच भी हरी, उन्हां विच भी हरी, फिर क्यों जुलम करते? ये उपदेश सुनिया उन आदमखोरा ने नामदेव के चरणा

पर मैनू ते राम दे बराबर ही सोना चाहिए। जे दे सकदे हो तां जरूर दे। सेठ हंकार विच हसिया, तकड़ी मंगाई। तकड़ी दे एक पासे वो पत्ता पिया है तुलसी दा जिहदे उत्ते राम लिखे है। ते सेठ ने हसदिया होया

अगर कोई बनारस जाके तप करे, उल्टा लटके तीर्थां ते जाके मरे, अग्नि विच अपना शरीर

कौआ कोई दान करे। कोट जो तीर्थ करे तन जो ही वाले गारे। कोट कहते करोड़ करोड़ा कोई तीर्थां से जावे, तन जो ही वाले गारे तन के शरीर में। अगर कोई अपने शरीर

ई पावन पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया। जिस शब्द अंदर सतगुरु गुरु नानक पातशाह सानू कलयुग जीवन उपदेश देंदे हुए यह गल समझ आते, असी चंगे क्यों नहीं। कदी किसी मनुख ने अपने आप नूं भी माड़ा आखिया, वह तो कहिंदा मेरे वर्गा चंगा है ही कोई नहीं, जिन्ना मैं सियाणा, जिन्ना मैं सुगड़, जिन्ना मैं गुणवान, जिन्ना मैं ज्ञानी, मेरे वर्गा कोई संसार विच नहीं है। पर साहिब कहिंदे ने भाई चंगा किसी चंगयाई नाल हुंदा है, शुभ गुणा दे नाल हुंदा है। अपने आप चंगे बन बहना उसनू चंगा नहीं आखदे। इधर पट बाणी विच कहिंदे ने चंगे किवें हो सकने आ जे साडे अंदर मालक दी समझ मुताबक गुण होण। ते जे हे परमात्मा तेरे शुभ गुण साडे अंदर एक भी नहीं, असी अपने आप नूं चंगे किवें खवा सकने। पट तां ऐसा कहिंदे।

मैं ते अवगुणा दा भरिया होया, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि चंगा ते मैं गुण नाल होना है ना। पर जे मेरे अंदर एक भी गुण ना होवे ते मैं चंगा किवें हो सकदा हां।

कंचन नारी में जियो लोबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर ओ गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जरा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना, ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इना विषय विकारां विच पै के, मोह दे जंजाल विच फस के, माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा असीं तेनूं भुलाया होया।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर किरपा बख्श, तुसी करो किरपा साडे अवगुण बख्श के ते सानू अपने चरणा नाल ला लो। कर किरपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां। अगे साहब।

मन्ना मैं रूप मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन ना कुल टंग ना कुल चंगी है ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने जेड़े मैं बोल बोल के तेनू अपने वस कर ला मेरे को।

हे माधो माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे। सत्संग तुम ध्यान देना हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ। सतगुरु कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

चंगे, हम पापी तुम पाप खंडो। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं, क्योंकि असी पाप करने वाले हां, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले, किवें चंगे हो गए। हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना, निको ठाकर देसा सामने नालों चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जांदा। हम ऐसे तू ऐसा, आओगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे किते मन च वस जाए जीवन बदल जांदा है, जीवन पलट जांदा है। हुण सतगुर ख्याल

तुम समसर नहीं दयाल मोहे समसर पापी। भगत कबीर जी कहते हैं हे मेरे माधव असी कहो जाए ते आप कहो जाए, कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी तुम समसर नहीं दयाल। समसर कहते ने तेरे वर्गा, तेरे वर्गा कोई दयालु नहीं है कृपालु नहीं है। मोहे समसर पापी ते मेरे वर्गा कोई पापी नहीं है। तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं, मेरे वर्गा पापी कोई नहीं, ते मेरे वर्गे अवगुण हारे दे ते अवगुण आप ही बख्श सकते हो।

मैं अवगुण हारा ते आप उपकारी हो, मैं अवगुण करी जाना आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी है, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है,

0: काहे नखंडस अवगुण मेरा।
1: हे रमैया मैं तेरा बालक हां, काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा दी याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल ए कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने। इसलिए भाई आओ आप उस मालिक अगे इस तरह बेनती करिए, गोबिंद हम ऐसे अपराधी, गोबिंद हम ऐसे

गोविंद हम ऐसे अपराधी। हे गोविंद असी किहो जे अपराधी हां, असी किहो जे हां, आप किहो जे हो। जे ता समुंद सागर नीर भरिया ते ते आ

गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि हे मेरे मालिक असी किहो जे अपराधी आ, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा दा जिक्र कीता है। कहंदे ने 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध संगत ध्यान करना,

जैसे सर्प दी आरजा है किसे काम नहीं, और बड़ी वड्डी आरजा होंदी है सप दी। अजगर सप्पां दी सैकड़े हजारां वर्ष आरजा होंदी है। आख्या साकत दी भी इसे तरह ही आरजा, जिस तरह ओ किसे काम नहीं आउंदे, बिना नाम तो मनुख भी किसे काम

बिन सिमरन भय कूकर काम साकत बेसुआ पूत ना नाम बिना सिमरन दे आख्या मनुख इस तरह है जिस तरह वेशिया दा पुत्र है ते अपने प्यो दा ना नहीं जानदा उनू कोई पुछ लवे भाई तेरे पिता दा की नाम है ता की दसेगा आख्या बिना नाम तो मनुख भी ऐसा ही है बिन सिमरन

अपने वार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावे जन्म मरे भोजोन परमावे। तन पूम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इहा मुक्त आ गए सुख पावे। तनवंता होए कर गर्भावे तृण समान कछ संग न जावे। बौ लश्कर मानख ऊपर करे आस पल पीतर ताका होए विनाश। सबते आप जाने बलवंत खिनमय होए जाए पसमंत। किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सोजन नानक दरगे परवान। कोट कर्म करे हो तारे शर्म पावे सगले विरधारे। अनेक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर फिर अवतार। अनेक जतन कर आत्म नहीं धरवे हर दरगे को कैसे गवे। आपस को जो पला कहावे तिसे पलाई निकट न आवे। सर्व की रेन जाका मन हुए कहो नानक ताकि निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए। जब ए जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग नेचर ना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभु के पाते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहस कटे लख को उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग भिख्या के करे न तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुख होए बड़ पागी किसे प्राप्त होए। कर्ण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप। कर्ण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप पर सोए। जो किच कीनो सो अपने रंग सबते दूर सबु कै संग। बूझे देखे करे विवेक आपे एक आपे अनेक। मरे न बिन से आवे न जाए नानक सद ही रह समाए। आप उपदेश है समझे आपे रचिया सब कै साथ। आप कीनो आपन विस्तार सब कुछ उसका ओ करने हार। उसते पिन कहो किच होए थान थनंतर एक है सोए। अपने चलत आप करने हार कौतक करे रंग आपार। मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी। सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना। पला पला पला तेरा रूप अति सुंदर अपारे अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी।

पाया जाए। हर हर नाम, हर हर नेम ऑफ गॉड नाम निदान है, एंड दैट इज द ब्लिस। गुरुमुख पाया जाए, द गुरुमुख इज गिवन, द ब्लेसिंग्स आर शावर्ड अपॉन द गुरुमुख। वी हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ टू हैव द गुरु एज अ गुरुमुख। The blessings of Waheguru are just showered upon us. That's a blessing. Har har naam nidaan hai, gurumukh paaya jaye.

सब गावे हर हर ऊतम बाणी, गावे सुनिया तिनका हर खाए पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी, जिन सतगुर की

परम सत्कार गुसा संघ जियो एक जकारा सारे रल के बुलाइए बोले सोनियाल भी इकट्ठे और सत श्री अकाल भी इकट्ठे। भाई साहब जी ने बेनती करांगे कि सुर देन आओ सारे को रसना पूछो।

जाता पाता खत्म करके एक नवा रूप और एक नवी थां दिती, ताकि हिंदुस्तान दे लोग जेड़े जाता पाता विच ऊंच नीच विच वंडे हुए हन, ते एक रूप विच आ जान, एक बाणी नाल जुड़न, एक परमात्मा नाल जुड़न, एक होन, क्योंकि जदों तक किसी देश विच एका नहीं हुंदा, देश दे वासी एक होके नहीं रहिंदे, उदों तक देश कौम धर्म की रख्या नहीं हो सकती। तां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एहो ही मंग कीती और एहो ही उपदेश कीता, एहो ही मंगो देश वा पर मोहे एह शुभ कर्मन ते कब होना कर। शुभ कर्म करते रहिए, शुभ कर्म करन लगिया ना डरिए और ना असी संगीए। इंटरनेशनल कीर्तन कौंसल वालों सारे सिख जगत नू नानक नाम लेवा नू इंसानियत नाल प्यार करन वाले इंसानां नू खालसे दे साजना दिवस दी असी लख लख बधाई देंदे हां। साथे नाल ही समूह संगतां नू एक बेनती करदे हां कि जो इस समय कुछ हौमे करके कुछ ना समझे करके आपस विच लड़ाइयां हो रही हैं, दुबदा ईरखा है, बेगाना कोई नहीं, सारे ही अपने हैं, किसी नु माड़ा नहीं कहना, जैसा सतगुरां दा वाक है, मंदा किसी ना आख झगड़ा पावना, जे किसी नु अपने कोल लेके आना होवे तां फिर उसकियां बुराइयां नहीं देखी दियां, उसनु बुरा नहीं कहीदा, हां उसनु समझाईदा जरूर है। आओ फिर आपां कुछ समां सिमरन करिए, सिमरन करदिया होया नाल अरदास भी करिए कि ऐ सतगुर तर कृपा पंथ तेरा है, ए संसार तेरा है, इस दे सिर ते मेर परे हाथ रख, पंथ विच एकता बख्शो ता जो जो पेड़ पै रहे हैं ये दूर होन और असी सारे एक हो सकीए। अखीर विच अपनी कौंसल दे समूह मैंबर वालों भाई साहब भाई हरबंस सिंह जी जगादरी वाले, भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, दास भाई बलविंदर सिंह रंगीला चंडीगढ़ वाले, संत अनूप सिंह जी ऊना साहब वाले, भाई गुरचरण सिंह जी रसिया लुधियाने वाले, संत निरंजन सिंह जी जवद्दी कलां वाले, भाई बलवंत सिंह जी प्रेमी नाभे ने बीबिया का जत्था, भाई साधु सिंह जी देहरादून वाले, भाई दविंदर सिंह जी सोढ़ी लुधियाने वाले, भाई जसवीर सिंह जी पौंटा साहब वाले, ये सारे गुरु के कीर्तन में अरदास करते हैं कि सतगुरु रहमत करे उहदे न्यारे पंथ की हमेशा चढ़दी कला होवे, ताकि ये पंथ सरबत का भला करदा और सरबत का भला मंगदा रहे। आओ सरबत दे भले वास्ते आपां कुछ समां रल के सिमरन करिए और नाल सिमरन करदे हां अरदास भी करिए।

सब तो पहला रागां विच श्री राग जो के इस समय ही गाया जाता है। बाणी विच इसनू रागां विच सिर मोर मन्या है। रागां विच श्री राग है। ते शब्द भी श्री राग दा पहला शब्द है। मोती ता मंदर उसरे रतनी ता होए जड़ाव, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाव, मत देख भूला विसरे तेरा चित न आवे ना। शब्द श्री गुरु नानक देव पातशाह जी दा उच्चारण कीता होया। राहो दी तुक है, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देख्या अवर ना ही था। मैं एक बेनती करूंगा बच्चिया नू, जरा इना दी गल्ला दी आवाज जे इधर आएगी तां मन खिंडदा है। फिर सब तो पहला जपताल 10 मात्रा ते अंतरा 10 मात्रे दा ही सुलफाक विच, सुलफाक चलंत लय विच गाया जांदा है। अंतराय दा चलंत लय विच है ते अस्थाई ठा विच है।